सूत्र देशनाव महाकारुणिक बुदुरजानन वहन्से विसिन लोक सत्यावित अनुकंपावेन देशना करन लद आरक्षक परित्राण देशना अतरें महा समय सूत्र देशनाव अति विशेष वोगे तारका समूहयक पिरिवरा बेबलेन पूर्ण चंद्रयासे एदा कपिल वस्तु नगरा सन्ने महा वनपित एकालोक करमिन समस्त महा विश्व तलेम बुद्ध ज्ञा छत्रेट हसु करमिन पवत्वन लद मे देशना विशेषेन्म सजायना किरिन्ने सम्यक दृष्टिक दिवितेवताउं वहन्सेलागी एल्म बेल्महा आशीर्वादे अपेक्षाविने एदा बुदुरजानन वहन्सेगी श्रीपाद मूलेहि गौरवाभिवादन पूर्वकव दस दहसक चक्रावाट्यन सिट सपमिने महानुभाव संपन्न दिव्य गणया बुदुरतुन सरण गिय यम पिंवतेक वेनम ए अय किसीदा अपायगामी वन्नी नैत कियमिन बुद्ध प्रमुख श्रावक संघ रत्नयट स्वकीय अत्यंत गौरवय पुदकलह मे वनाहि विश्वगत दिव्य शक्तीन एकराशी करमिन जीवितेत एलमिन सकलांतराय दुरुकुट सित शांतिय सलसीमेला महोपकारी वन परित्राण धर्मयकि सियलु देवियन्के आशीर्वादय पिनिस ए महानुभाव संपन्न महा समय सूत्रय सतहे सितिन सज्जायने करुण लबन्ने पूज्य गणी कुमुरे शांत स्वामी वहांस।